ला छ गजर दे मयंग जे मा व्यान तक ला मलम त यंग छ मा जर दे यो का दनी सथुंग ग खर्मा न न इग्नोर दे गु मयंग स गनो केना छ रे न अजेंग ग यंग जे का यंग जे ग जे जे नो त छ ग सोंद्र केना यंग जे सा ग नो न तो मयंग जे यांग आ सा ग यंग स गनो मयंग मा स गनो न तन दे दे कोदन छ रे दे से जि न सा जे छेन बुन दे त ना दो पी यन दन ला से चंग छ खा दंग दे एम बी जिओ नाम जे आ दा नो छ चंग छ न जिओ टाइम जे ग दे जे ओ मु स दा सिर गुन दी ग अब ग शे क यन दन द मु जे रे के मु जे रे ए त जे टाइम छ ग छ रे न त ता वी तीन जे वाला छ रे न गु ख तम खो ना ल वाला छ रे न सेम छ गे दे जे ते ला शी खो रे ती ग त छ सों ए मग छि रंग शंग यंग वी जे मा जे न त ला दे जे या मग यंग स गुन मग छि रंग शंग यंग वी छ रे न जे मा जे न त ला अनिलम ग कापसंग चिरदना सेम माखुर दि आ ता सदा खरु चिरदना तिगन देवा खुनाला अनिर जोय देतंग आ ता देमा जेन तका चिरदना अनिलम ग नंग निरा चिरदना अनि मान्योस अनिलम ग नंग निरा चिरदना देमा जेन बाल दे इलाटेन मान्योस सेम माखुर मान्योस सगुनो नंग दन देले जि जेना चिरदना जिक्तन टुखि थामली गवि खारशु गोटा वागे चिरदना लिक जि युन देंग गजेन जि आ दिवि युन देंग गजेन जि तनी निवाय ना ayangchin mang na zong e chi tami lu khas si gen zin a ni nang tan si de na te deng ge a char tang de na yo nu gi chi na jiu tam chi ge de ma ti chi na tam ko na la chi na chi ge de tang a ma lum ge nang ne chi na de ma jan ta chi na ni lum ge nang a chi ko ma ni ge ge de deng ge chi ge deng ge na hui ju ge na chi na chang a ge si mo ta mo yang chin ma ta ge chi na nyang de le chi men bu ju rong a de mo ze re si a ju rong ge si ᱡᱮᱱᱛᱱᱟ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱟᱡᱤᱠᱷᱤᱱᱛ ᱢᱟᱫᱩᱠᱷᱤᱥ ᱱᱤᱜᱪᱤ ᱟᱴᱟᱢᱩ ᱜᱮᱞᱚᱠᱷᱟᱛ ᱟ ᱟᱞᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱤᱥᱤᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤᱥ ᱛᱮᱱᱡᱱ ᱢᱟᱨᱮᱛ ᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱢᱩ ᱜᱤᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱠᱟᱱᱭᱟ ᱮᱱᱴᱤᱜᱪᱮ ᱟ ᱛᱢᱩ ᱜᱤᱪᱨᱱᱟ ᱡᱟᱣᱤᱱᱟ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱟ ᱱᱫᱢᱩᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱤᱜᱩ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱡᱚᱯᱨ ᱮᱣᱟᱡᱨᱤᱥ ᱛᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱜᱨᱤᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱨᱤᱥ ᱚᱱᱛᱤᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱡᱮᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱨᱮᱛᱤᱥᱱᱟ ᱟᱴᱟᱢᱩ ᱜᱮᱞᱚᱠ ᱯᱟᱛᱟᱵᱨᱤᱥ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮᱞᱚᱠ ᱦᱟᱡᱜᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱫᱩᱜ ᱢᱮᱠᱟᱥ ᱟᱞᱩ ᱛᱚᱝ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱠᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮᱞᱚᱠ ᱯᱟᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱟᱭᱟᱝᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱡᱚᱝᱮ ᱫᱮᱥ ᱣᱟᱛᱟᱵᱤ ᱟ ᱠᱮᱭᱱᱟ ᱟᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱱᱜᱞᱟ ᱜᱩᱝᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱤ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱜ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝᱪᱮᱱ ᱢᱟᱜ ᱧᱟᱝ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱢᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱤ ᱥᱮᱝ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱡᱨᱮᱥ ᱡᱮᱱᱛᱱᱟ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱱᱜᱱᱟ ᱱᱮᱵᱤ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱢᱟᱫᱩᱠ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱟ ᱱᱡᱤ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱥ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤᱥ ᱛᱮᱱᱡᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱫᱮ ᱥᱟᱫᱟᱨᱟ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱱᱤᱠᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱡᱮᱱᱛᱤᱜ ᱪᱮᱯᱨᱤ ᱵᱟᱜ ᱪᱮᱯᱨᱤ ᱟ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱛᱟᱵᱨᱮᱛᱱᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟᱵᱨᱮᱥ ᱡᱮᱱᱪᱤ ᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱪᱤᱛᱟᱵᱨᱮᱛᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱟ ᱱᱮᱵᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱵᱨᱮᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱱᱚᱱᱛᱮᱱᱫᱨᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱠᱚᱢᱟ ᱱᱤᱜ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱟᱫᱟᱣ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱠᱚᱭᱱᱨᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜ ᱠᱷᱤᱡᱤᱝ ᱱᱟᱱᱮ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟᱣ ᱜᱮ ᱯᱤ ᱠᱷᱚᱭᱨᱮ ᱢᱩᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱜᱞᱟ ᱢᱟᱞᱢ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢᱟ ᱪᱨᱤᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱣᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱥᱢᱵᱟᱭᱱᱟ ᱪᱨᱤᱡᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱨᱤᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱢᱥ ᱥᱟᱫᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱡᱩᱞ ᱡᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱴᱷᱮᱱᱠᱷᱨᱱ ᱴᱮᱣᱟ ᱱᱢᱤᱝ ᱤᱥ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱴᱟᱝᱥᱚᱱ ᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱡᱢᱵᱤ ᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱛᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱠᱚ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩ ᱟ ᱡᱤᱣᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱣ ᱡᱤᱣ ᱪᱤᱛᱟᱵᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱚ ᱥᱟᱫᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱯᱤ ᱡᱤᱣ ᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱣᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮᱫᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱤᱣᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱥ ᱠᱟᱣᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟᱵᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱡᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱛᱟᱵᱨᱮᱥ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱢᱵᱚ ᱜᱟ ᱚ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱡᱢᱵᱤ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱵᱨᱮᱥ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱵᱤᱥ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱡᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱜᱟᱥ ᱟᱡᱮᱱᱪᱮ ᱫᱮᱡᱚ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚᱯᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱫᱤᱡᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮᱛ ᱠᱩᱢᱮᱠᱟᱥ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚ ᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱠ ᱢᱮᱠ ᱫᱮᱡᱚ ᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱠ ᱢᱮᱠᱟᱥ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱜᱛᱮᱥ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱫᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱜᱮ ᱧᱤᱝ ᱫᱮ ᱠᱨᱩᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛ ᱟᱫᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱡᱚᱠᱩᱜᱮᱥ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱨᱮ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱜᱟᱝᱜᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱥ ᱜᱟᱥ ᱟᱨᱤᱥ ᱜᱞᱟᱛ ᱡᱤᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱥ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱫᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱥ ᱫᱮ ᱥᱮᱞᱮ ᱪᱷᱤᱨᱥᱚᱱ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱤᱱᱢ ᱛᱷᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤᱥ ᱟ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱛᱷᱤᱪᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱩᱱᱫ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱤ ᱛᱷᱤᱪᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱜᱩᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱤᱱᱢ ᱛᱷᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱷᱚᱨᱤ ᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱴᱷᱤᱝᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱦᱟᱞᱟᱠ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱮᱥᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱴᱟᱝ